0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2120-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वानां दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007 प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है, 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

जिचर कट अंतर है सासा एक पालखेन विसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा।

0: जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: परम सन्मान योग पतित पावन भगत वशल करुणा निधान दीना बंधु ज्योति स्वरूप चवर शतर तखत दे मालिक जुगो जुग अटल दसा पातशाहियां दी जागदी जोत अंतरजामी साहिबे कमाल दीन दयाल प्रतख सतगुरु धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी महान पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सचे पातशाह महाराज सोडी सुल्तान धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया ऐसे दीन दयाल सतगुरु महाराज जी के पावन स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी श्री दरबार साहिब श्री अकाल तख्त साहिब जी के महान महान पावन स्थाना पर हाजरीन हो रही गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु की साजी निवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ दीवान हाल मंजी साहिब जी विखे सचे पातशाह महाराज साहिब जी दे पावन चरणा पास अपनिया हाजरियां लगवाइए श्रद्धा भावना सहित दोवे हाथ जोड़ सतगुरां नूं सीस झुकाइए मेल उचारिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंतरजामी सतगुरु महाराज सचे पातशाह जी ने बेअंत कृपा कीती है सारे ही संसार सब मनुखता सब जिया दी कल्याण भले वास्ते उस पावन स्थान दे उपर अमृत वेले दे समय प्रकाशमान हो करके सर्वसांझा उपदेश बख्शिश कीता है जिस दे बाबत पावन गुरबाणी जी के बचन हन डिठे सबे थाव नहीं तुद देहया बदोह पुरख बिधातै तां तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अमृतमयी गुरबाणी दे विचों साढ़े सब जिया की कल्याण भले वास्ते महाराज जी ने यह पावन श्री मुख वाक जी की दात बख्शिश की इस बख्शे हुए पवित्र श्री मुख वाक और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ी बार पावन गुरबाणी जी की शुभ कथा विचार सरवण करने दे लई आप समूह साध संगत दीवान हाल मंजी साहिब जी विखे और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दे राही आपो अपने घरां दे विच देश विदेश विच थां पर थां सतगुरु जी महाराज जी दे चरणां दे विच अपना चित जोड़ रहे हो आसा दी वार जी दे पावन कीर्तन गुरबाणी जी दे शब्द गाए सन्मान योग रागी सिंघां दी रचना तो सरवण कीते ने सारे संसार दे विच साध संगत दी बहुत सारे स्थान ने बहुत सारियां थावां ने जिन्हां दी यात्रा करन वास्ते सैर करन वास्ते संसार दे लोक जांदे ने उन्हां थावां ते उन्हां दी आपो अपनी विशेषता पर दुनिया विच अजिहा कोई थां नहीं है जिस थां दी यात्रा करदिआं दर्शन करदिआं इशनान करदिआं तन और मन नूं शांति प्राप्त हुंदी होवे। अजिहा स्थान इस धरती दे उपर नौ खंडां दे इस ब्रह्मंड दे विच केवल सतगुरु महाराज साहिब जी ने यह पावन स्थान रचिया है जिस दे सानू सब नू दर्शन हो रहे ने। जिथों सात संगत दी ए आवाज ए बचन हमेशा गूंजदे ने कि खत्री ब्राह्मण सूद वैश उपदेश चह वरना कौ संधा गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल मह घट घट नानक माझा। जिथे किसी दे नाल भी किसी तरह का भी भिन्न भेद वितकरा फर्क नहीं किया जाता सतगुरु जी की चलाई मर्यादा अनुसार जिथे गुरु की संगत विच बैठ करके पावन गुरबाणी जी के शब्द रूपी प्रसाद नू सेवक सिख अवेलाखी जिग्यासु गुरमुख अपने हिरदिया रूप भांडिया विच पाउंदे ने उथे साध संगत की तन की भुख मेटण दे लई अपने मुख दे राही गुरु के लंगरां दे विचों भी बेअंत बख्शिशां प्राप्त हुंदियां ने। ऐसा पावन स्थान जिथे सतखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे दर्शन दीदार अमृत सरोवर दा इशनान जिस दे बावत सतगुरु जी की पावन बाणी दे वचन रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर इशनाना गुरपुरै कीने दाना। इसे तरह फिर सतसंगत जी जिथे सतखंड श्री हरिमंदर साहिब सारी मनुखता दे लई सांझा सब दे लई उपदेश देण वाला उथे विशेष करके सतगुरु कलगीधर साहिब जी महाराज धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी वलों साजे खालसा पंथ की योग अगवाई करन वाला पावन अस्थान सारे तख्तां दे विचों श्रोमणी तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जी की पावन अस्थान इमारत ओ धरती ओ थां ओ हिस्सा जिथों दे दर्शन करन दे लई हरेक सिख दी सदा वास्ते लालसा इच्छा बनी रहिंदी है। सत संगत जी राजनीतिक लोकां दे आपो अपने राज ते उहनां दे तख्त ने आप सारी संगत इस बात नूं भली प्रकार जाणदे हो कि दुनिया दे तख्त दुनियावी राजयां दे तख्त बादशाहां दे तख्त समय समय अनुसार बदल जांदे ने। इस धरती दे उत्ते अज तक कोई भी ऐसा नहीं जिस दा राज सदा वास्ते स्थापित बनिया रहे कोई ऐसा नहीं है जिस दा राज पिछे बनिया रहा होवे ते कोई ऐसा नहीं होवेगा जिस दा सदा लई राज बनिया रहे। भावें बहुत सारे लोगों ने दावे किते सन औरंगजेब ने दावे किते सी समय समय अनुसार अबदाली वर्गिया ने दावे किते कई हुण भी दावे कर लैंदे ने पर सत संगत जी उहनां दे दावे झूठे पै जांदे ने क्योंकि ये दुनियावी राज तख्त कदे भी स्थापित नहीं रहिंदे हन। ये जिहड़ा धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने पावन तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जी का रचिया है जिस दी सिरजना दा दिवस सात संगत जी परसों नूं हाड़वदी पंचमी वाले दिन जो सतगुरु जी ने 1663 बिक्रमी संबत 1606 ईस्वी सन दे विच श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी की शहादत तो उपरंत रचिया और इस अकाल तख्त की रचना महाराज साहब जी ने अपने सिखां दी आजाद अडरी होद हस्ती नूं साबित रखण वास्ते कीती जिथे सत संगत दी सिखां नूं इस तख्त की छत्र छाया दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन बाणी का आसरा लैंदियां और नाल महाराज जी ने यह सिख्या प्रदान की कि अपने तन दे उते शस्त्र धारण करने। सतगुरु जी ने भी दो तलवारां धारण कीतियां सी ना मीरी और पीरी दियां अकाल तख्त जिसका पहला नाम अकाल बुंगा रखिया, 14 फुट लंबा, 7 फुट उच्चा, 8 फुट चौड़ा वह स्थान जिसका नाम अकाल तख्त रखिया है। तख्त फारसी और उर्दू का शब्द, बैठन वाली थान सिंघासन। अकाल दे जदों अर्थ पढ़ांगे सात संगत जी, काल नाम हुंदा समय दा, काल नाम मौत दा, ते काल नाम हनेरे दा भी है। ते जदों मुरे आड़ा लगा है इस दा भाव कि उह समय मौत और हनेरे तो रहत, दुनियावी तख्त राजनीतिक लोकां दे तख्त समय दी हदबंदी दे विच हुंदे ने, बदल जांदे ने। जे समय दी हदबंदी विच ना होण ते दूसरा कोई भारी बल वाला अपनी ताकत दे नाल पहले राजे कोलों तख्त खो लैंदा है ते तख्त दा मालक बन जांदा है। पर इह तख्त सात संगत जी अकाल दा है, जिहड़ा समय तो रहत है, जिस दे उपर किसे दा भी बल नहीं, जिहदे उत्ते किसे दी भी ताकत नहीं चलदी, जिस उपर किसे दा भी जोर नहीं चलदा। फिर दूसरा भाव है काल नाम मौत, सभी इसे तरह हनेरे दा। जदों सात संगत जी मौत हुंदी है जां मौत दिसदी है, उस तो अगां कुछ भी नहीं है, हनेरा है। पर सतगुरु महाराज जी ने यह अकाल दा तख्त रच करके अपने सिखां नूं इस हनेरे दे विच्चों ही एक रोशनी और जिंदगी बख्शिश कीती है कि जदों दुनियावी पक्ष वलों, दुनियावी लोकां दे, राजनीतिक लोकां दे, तख्तां दे वलों निराशता हनेरा हिरदे विच आ जावे, उस समय साडे सिख ने इस तख्त दी शरण दे विच आउणा ते इस तख्त तों अकाल दी रोशनी दा ज्ञान प्राप्त होवेगा, जिस रोशनी दे नाल इस जिंदगी और जीवन दे सफलता दे नाल नाल अपने आत्म स्वरूप नूं परमेश्वर विच भेद कर सकदा है। हनेरे विच चल के किते जाना होवे ते कदे मनुख किते पहुंच नहीं सकदा है, उस नूं हनेरे दे विच रोशनी दी लोड़ जरूर पवेगी, चानण चाहीदा है, फिर वो अपनी मंजिल ते अपने टिकाने ते अपने मिथे हुए निशाने ते पहुंच सकदा, अपने मकसद नूं पूरा कर सकदा है। सात संगत जी इसे तरह जिंदगी दा ये जीवन दा एक मकसद है, एक निशाना है कि असी अकाल परमेश्वर वाहिगुरु नूं प्राप्त करना है, ते वो किस तों रोशनी लै के प्राप्त हो सकदा फिर अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु जी के स्थान तो। ताई महाराज साहिब जी ने सब तो पहला वचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के मूल मंत्र स्वरूप दे विच अकाल मूरत कह के दर्शाया है, ते उसे दी मूरत हस्ती नूं जेड़ी सात संगत जी होर सारियां रत प्रीतियां तो रहत है, उसे दे स्वरूप नूं धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने रचिया। बड़े बल दे नाल कविराज भाई संतोख सिंह साहिब जी वचन करदे ने श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे अंदर, कहिंदे बहुत बल दे नाल सतगुरु जी ने सब तों पहली इट आप अपने पवित्र हस्त कमलां दे नाल टिकाई, और फिर किसे मिस्त्री नूं नहीं लिआंदा, किसे मजदूर नूं नहीं लिआंदा, धन बाबा बुढ़ा साहिब जी महापुरख जेड़े सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी की चरणा की सेवा दे विच बचपन की अवस्था विच ही हाजिर हो गए, गुरु घर के महान गुरसिख ब्रह्म की अवस्था नूं परनाए होए सात संगत जी, सतगुरु जी की कृपा मेहरबानगी दे बख्शिश दे पात्र धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पहले मुख सेवादार स्थापित होए, तिना की चोण की इस अकाल तख्त साहिब जी की रचना करने वास्ते। दूसरे गुरसिख कौन सन? धन सतगुरु महाराज श्री गुरु अमरदास साहिब जी के रिश्ते भतीजा लगते ने धन भाई गुरदास साहिब जी, जिन्हों गुरु साहब जी दियां बेअंत बख्शिशां प्राप्त हुई ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन लिखाई करन दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु की बाणी दी कुंजी कही जांदी है उन्हां दी पावन रचना भाई गुरुदास जी की शुभ वारां उन्हां दी चोण कीती है। इतिहास दे बचन हन किसी ही राज नह हाथ लगायो बुढ़े आओ गुरुदास बनायो। किसी भी राज मिस्त्री ने नहीं बनाया है इस अकाल तख्त नूं अकाल बुंगे नूं। बनाउण वाले कौन ने? गुरु के प्यारे गुरु कियां बख्शां दे पात्र धन बाबा बुढ़ा साहिब जी और धन भाई गुरुदास साहिब जी। आग्या किस दी नजर सानी किस दी है? दीन दुनी दे मालक जिन्हां दे बाबत भाई साहिब दी रचना दा ही बचन पढ़दे हां दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पर उपकारी। सत संगत जी शरीर की अवस्था किन्नी सी छेवें पातशाह महाराज जी की? केवल 11 साल की। 11 साल की शरीर की अवस्था है सतगुरु जी की। पर भाई साहब जी का वचन चेते विच रखना राय बलवंड सत्ता डूम जी का। वह कहिंदे ने जोत ओहा जुगत साए सह काया फिर पलटी है। काया शरीर की गल नहीं है इत्थे, इत्थे जोत ते जुगती की बात है। ये ओहो ही चल रही है जिहड़ी गुरु नानक देव साहिब जी तो आरंभ होई। ते सतगुरु महाराज जी ने आप कृपा करके फिर उस पावन अस्थान की सात संगत जी उसारी करवाई। दुनिया के उत्ते जिन्ने अज तक राजे होए ने उन्होंने सदा यह चाहा है कि साढ़े सामने होर कोई भी अपना राज स्थापित ना करे। समय के बादशाह ने सतगुरु महाराज धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भी ये बोल कहे सन कि तुसी इस तख्त की एवे स्थापना ना करो, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने तख्त रच के सिखा नू ये आग्या कीती सी कि जदों साढ़े दर्शना लिए आना है साढ़े मिलन वास्ते आना है अपने तन दे उते सोहने शस्त्र सजा के घोड़िया की सवारी और भेटावां लैके साढ़े पास आना है। सानू होर कोई भेटा नहीं चाहीदी है। ये भेटावां महाराज जी ने लैण वास्ते आग्या कीती सी। सिखां दे उते खुशी दा वचन महाराज जी ने कहा सी। तो सत संगत जी समय दे बादशाह ने इस गल नूं जाण के सतगुरु जी नूं कुछ नजराने भेट करन दी बात भी कही सी कि जे तुसी अपने इस तख्त नूं रचना है ते साडे वलों कुछ भेटावां पदार्थ माया लाओ ते इहदी उसारी करो। ते सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी ने वचन किया सी कि यह तख्त किसी राजनीतिक पुरख का तख्त नहीं है, राजसी शक्ति दे मालक का तख्त नहीं है, यह अकाल का तख्त है। गुरु कियां संगतां सिखां दी कार भेट दसवंध की माया दे नाल इस दी उसारी होवेगी। महाराज जी ने फिर सतसंगत दी संगतां दी दसवंध की माया दे नाल इहदी उसारी करवाई। इसे तरह फिर सतसंगत की समा बनता महाराजा रणजीत सिंह ने इसकी उसारी वड्डी कीती। कोठा साहब का स्थान भी विचे वलिया। इसे तरह फिर नवाब साहब जी ने बाद विच इस दियां उपरलियां मंजलां की उसारी करवाई सी। समय समय के राजनीतिक लोगों ने अपने बल ताकत दे नाल इस नूं ढाउण दे जतन कीते। चाहे वह सतसंगत जी जकरिया सी, मीर मन्नू सी, जां फिर वह अबदाली दुरानी सी, ते जां फिर मौके दियां सरकारां 84 दे वेले तक, इन्हां ने बाहरी तौर ते इस नूं ढाउण दे जतन कीते। पर जदों इस गल नूं जाण लिया वी इस नूं बाहरों ढाया सिखां दे हौंसले खालसा पंथ दे मनोबल नूं डेग नहीं सकदे, ढा नहीं सकदे, फिर उन्होंने सिद्धांतक हमले करने शुरू किए। तो अज साध संगत जी वो अपने मनसूबे विच किते ना किते कामयाब होंदे दिस रहे ने। उसका कारण है साडी टलियाई, साडी ढिल, क्योंकि घरां विच चोरी उदों हुंदी है जदों साध संगत जी मालक अचेत हो जावे, सावधानता तो रहत हो जावे, चेतना ना रखे। सावधान होइए साढ़े सतगुरु महाराज साहिब जी ने, क्योंकि अकाल तख्त साहब की रचना साध संगत जी सचे पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जिन्हां नूं आपां शहीदां दे सरताज, बाणी के बोहित, शांति दे पुंज, सच दे सूरज कहिंदे हां, तिन्हां सतगुरां जी की पावन शहादत शहादत दे विचों सतगुरु जी के डुले हुए लहू दे विचों सत संगत दी श्री अकाल तख्त साहब जी की रचना हुई। फिर यह कली कोई इमारत नहीं है, सिख का एक सिद्धांतक स्वरूप है सात संगत की, जिथों सिख नू सब तरह की ताकत शक्ति बख्शिश की प्राप्ति होंदी है। सचे पातशाह महाराज मेहरामत करन बख्शिश करन ए बेनती इस वास्ते कीती कि परसों नू सात संगत की श्री अकाल तख्त साहब जी की सिरजना का दिवस आ रहा है। अपने मन दे विच इस भाव नू लियाईए, ख्याल धारण करिए कि यह वो दिन सन जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज इसे धरती दे उते बैठ करके अपने मन दे विच ख्याल धारण कर रहे होणगे, विचार लिया रहे होणगे कि असी एक अकाल दा तख्त बुंगा रचना है जिस दे अधीन सारे सिख आप आण करके सदा अपना शीश झुकाया करनगे। इथों अपनी अगवाई लै करके, सिख्या लै करके अपने जीवन की सफलता प्राप्त करनगे। इथों अपने राजसी व्यवहारक संसारी ते परमार्थ दे सब कारजां नू संपूर्ण करया करनगे। इह दिन सी ना महाराज जी विचार रहे होणगे कि बाबा बुढ़ा साहब नू लाईए, भाई गुरदास जी नू लाईए, जां फिर कोई सियाणा मिस्त्री लभ के लियाईए, असीं इक तख्त रचना है। घर बनाउणा होवे ते आपां मिस्त्री लभदे आ ना चंगा कि बहुत सियाणा कोई मिस्त्री लै आईए। तो महाराज जी सात संगत जी ये कोई कुछ समय लई रहण वाला घर थान नहीं सन बनाउण लगे, महाराज जी वो स्थान बनाउण लगे सी दुनिया के तख्त खत्म हो जाने पर यह तख्त श्री अकाल तख्त कदे खत्म नहीं होना, इस दी हस्ती कदे नाश नहीं होनी। महाराज जी ने इस तख्त की रचना करनी सी। यह दिन सन महाराज जी जान रहे विचार रहे होणगे। असी भी अपने मना विच ख्याल लियाईए, सतगुरु कृपा करन, आओ सारे मनोबिरतियां एकाग्र करिए। जो पावन बचन श्री मुखवाक और लड़ीवार गुरबाणी दे विच सानू साडी कल्याण भले वास्ते सब महाराज बख्शिश कर रहे ने, तिना बचना दी विचार विच जुड़िए। सारिया संगतां मिल करके मनोबिरतियां एकाग्र करदे होए सतगुरु जी के चरणा का ध्यान करिए, मिल सिमरिए जी सतनाम श्री वाहे गुरु।

तीसरे पातशाह महाराज सेवा और निब्रता दे स्वरूप जिन्हां दे बाबत पावन गुरबाणी जी के पाठ साहबान जी दे बचन हन, गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जीह कश कही न जाई। ऐसे धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जिन्हां दे बाबत बचन पढ़दे हां, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। हे सतगुरु महाराज, आप जी की बेअंत वड्याई एक जीव नाल कथन नहीं कीती जा सकती। आप जी दी वड्याई शोभा आप जी नूं ही बनाउंदी है, की कथन करिए। ऐसे धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जिन्हां ने बजुर्ग अवस्था दे विच सत संगत दी गुरु घर दी सेवा आरंभ कीती, और सेवा भी ऐसी रिश्ते विच कुड़माचारी दा संबंध भी नहीं विचारिया। ऐसे निम्र सुभाव नूं धारण करदिआं 12 सालां तक महाराज जी दे चरणां दी सेवा निभाई। दीन दयाल धन श्री गुरु अमरदास साहिब सोरठ रागणी दे अंदर पावन बचन वाहिगुरु परमेश्वर दे

0: महाराज आप जी का जो शब्द है ना उस द्वारा ही असी मुए मरे हाँ जीवित भाव दे वलों ते शब्द मार जी वाले जेड़ा शब्द है ना उही महाराज साहब जी साडे आपेपन नूं जेड़ी हंगता है हंकार मोह दा रूप है उस नूं मार करके जीवाले ज्यौंदे करदा जीवित भाव च लै आउंदा है। हम शब्द मुए श्री गुरु अमरदास साहिब जी का ही वचन है महाराज कृपा करके समझाउंदे ने शब्द मरहो फिर जीवो सद ही तां फिर मरण न होई। जदों गुरु साहिब जी के शब्द द्वारा आपे नूं मार लवांगे इस दा भाव है सत संगत दी जीवित भाव तो आपे नूं अपने हंकार नूं अपने माण नूं मैं मेरी मोह नूं मेट लैणा आपे नूं मार लैणा आपे दा त्याग कर देना अपनत धारण करके रखदे हन कि मेरा शरीर है ये मेरे संबंधी ने यह मेरी जमीन जायदाद है यह मेरी धन संपत्ति है मैं इहदा मालक हाँ यह सारा कुछ मेरा है यह मेरा कीता मेरा बनाया होया कुछ भी अपना नहीं। महाराज कहिंदे जदों ये भाव त्याग देवोंगे तो यह त्यागया किवें जाना है शब्द मरहो शब्द दे नाल हम शब्द मुए महाराज आप जी दे शब्द की कमाई करके आप जी दे उपदेश नूं कमा के आप जी दी सिख्या नूं धारण करके असी आपे वलों मरे हाँ ते शब्द मार जी वाले भाई हे भई जेड़ा ये शब्द है ना ये आपे वलों मार करके संसार वलों मार करके जी नूं हरि वाहिगुरु परमेश्वर दे वल जिउंदा कर दिंदा है। हुण संसार दे उत्ते साध संगत जी किसी दी सौ वरे हजारां वरे भी पुराने समयां विच उमरा रही जे वह इनी उम्र बतीत की पर इनी उम्र दे विच वाहिगुरु परमेश्वर की भगती नहीं तो फिर दसो ऐसी उम्र का लाभ है कोई। सतगुरु जी ने ऐसी उम्र नूं वड्याया किते नहीं वड्याया है। धन गुरु नानक देव साहिब जी का वचन आप रोज पढ़ते महाराज कहिंदे जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणीए नाल चले सब कोए चंगा नाओ रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै की करना फिर ऐसी उम्र नूं। गुरु के उपदेश द्वारा सत संगत जी आपे नूं मार के गुरु के प्रेम विच जदों जिउंदे हो गए जीवन ओ सफला है ओ जीवन दी सफलता है।
1: शब्द ही मुक्त पाई
0: वचन करदे ने शब्द ही मुक्त पाई गुरु के शब्द उपदेश द्वारा ही मुक्ति नूं प्राप्त होईदा है।
1: शब्द मन तन निर्मल होआ
0: गुरु साहब जी का शब्द उपदेश ही है सत संगत जी जिस दे नाल मन हिरदा ते तन शरीर निर्मल हुंदा है। मन दे विच मैल लगी है किवें लैंदी है रोज बचन पढ़ते हो भरी मत पापा कै संग ओह तो पै नावै कै रंग नाम की है गुरु साहब जी का शब्द गुरु का बचन गुरु की बाणी। साहिब कहिंदे ने बचन कर रहे ने महाराज के शब्दे मन तन निर्मल होवे हुण तन दी मैल किवें लैंदी है तनू ते बारले पानी साबण अते फलेल ला के भी इहदी मैल ला लईदी सुगंधी आ जांदी तन ते पर इह मैल नहीं है। जरा इस वचन नूं ध्यान दे नाल समझना तन दी मैल की है साध संगत दी अखां दे नाल पराया रूप तकना तन दी मैल है रसना दे नाल छे रसां दे विच फसे रहना पदार्थां दे रस लैणे जीभा दे नाल दूसरे दी निंदा करनी कन्ना दे नाल निंदा सुननी हत्थां दे नाल पराया हक खोना पैरां दे नाल भैड़ियां दी संगत विच चल के जाना यह तन दी मैल है साध संगत जी। यह तन दी मैल कदों लैंदी है ते किवें लैंदी है गुरु साहब जी के शब्द उपदेश दी कमाई दे नाल जदों गुरु साहब जी दे चरणां दी शरण विच आईदा है उदों गुरु का वचन जदों हिरदे च वस जाए। महाराज जी दे प्यारियां ने समझाया सी ना ये जा के पुछता भी तेरा संग कौन कौन निभावेगा जिन्हां दे लई तू भैड़े कर्म करदा है। ये गया सी जा के पुछया घरवाली ने भी मना करता तेरे लड़ लगी हां तू ही मेरी पालना करनी संभाल करनी माता पिता ने क्या वड्डियां कर दिता पाल के हुण साडी सेवा तू संभाल कर पुत्र ने कहा तेरा बच्चा हां तू पाल पाप कर्म करेगा ते लेखा तू देवेगा मैं तेरा संगी क्यों बना। ते फिर साध संगत दी ए तन दी मैल जदों समझ पै गई कि मैं भैड़ा कर्म कर रहा हां उस समय फिर उपदेश की जाचना की उन्होंने वचन दिता सी सतपुरखा ने मरा मरा क्या कर बिरती जुड़ गई मरे मरे तो राम रमे हुए मालक परमेश्वर का नाम हिरदे च ज्ञात हो गई फिर सात संगत की जीवन की सफलता हो गई। की है ये सिख्या है वचन है शब्द है उपदेश है गुरु की बाणी का जिस द्वारा अपने मन ते तन नू निर्मल कर लईदा निर्मल मैल तो रहत कर लईदा है। शब्दे मन तन निर्मल हुआ हर वसया मन आई ते हरि वाहिगुरु परमेश्वर जेड़ा है ना वो फिर मन हिरदे विच आके वस जांदा है। आपां किते जाके रहना होवे गंदे थां ते बहिंदा जी कोई कोई नहीं बहिंदा साफ करदे सफाई करदे हां चंगा थां वेखदे हां ते जिस परमेश्वर ने हिरदे विच आ करके हिरदे रूपी तखत ते आण के विराजमान होना है इहदे विच विकारां ते विशियां दी मैल वाले थां ते परमेश्वर आवेगा कदे कदे नहीं आवेगा। किथे आवेगा जिथे साध संगत जी गुरु का शब्द वसदा है जिथे गुरु का वचन वसदा है उथे परमेश्वर आण के विराजदा है। हर वसया मन आई फिर हरि वाहिगुरु परमेश्वर मन विच आण के वसदा
1: शब्द गुर दाता जित मन राता।
0: शब्द इस शब्द का दाता कौन है गुरु है गुरु तो बिना होर कोई शब्द देण वाला नहीं। अजकल दुनिया ते बड़े झूठे गुरु ने कन्ना मन्ना कुर तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर कहणगे मैं तेरा गुरु तू मेरा चेला दसी ना किसे नू तेनू नाम दिता अज एक किहो जिहा नाम है जिहड़ा किसे नू दसना नहीं। सतगुरु अमरदास साहब तां पुकार के कहिंदे ने आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी महाराज ते पुकार के कहिंदे हन। शब्द साध संगत दी गुरदाता गुरु साहब जी का दिता होया ये शब्द है जिस दे विच जित मन राता जिहदा मन रत्या रंगिया गया
1: हर सो रहया समाई
0: ओ हरि वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल समा जांदा मिल जांदा भेद हो जांदा।
1: शब्द न जाने है से अन्ने बोले
0: धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज कहिंदे जेडे शब्द नहीं ना जानदे गुरु साहब जी का वचन नहीं जानते वो अन्ने ते बोले ने। महाराज साडियां ते अखां भी ने ऐनक भी नहीं लगी असी ते चंगी तरह पढ़ देख लैंदे हां साडे ते कन्न भी बड़े चंगे ने महाराज असी सुन भी सारा कुछ लैने सानू बोले किवें कहे ने ओ। महाराज कहिंदे जेडे शब्द नहीं ना जानते गुरु का वचन उपदेश सिख्या नहीं जानते वो अन्ने हन। क्यों अन्ने ने क्योंकि उन्हां दे कोल ए मन ते बुद्ध रूप नेत्र अखां ने जिवें साध संगत जी दो प्रतख अखां हन एवें मन ते बुद्ध दो अखां ने। इन्हां दोवां अखां दे विच केड़ी नज़र हुंदी है एक ज्ञान दी ते एक विचार दी। दो अखां विच जिवें नज़र है इसे तरह मन ते बुद्ध रूपी नेत्रां विच नज़र है ज्ञान ते विचार दी। मन दे विच साध संगत जी ज्ञान हुंदा है ते बुद्धि दे विच विचार हुंदी है। मन ते बुद्धि रूप अखां नू खोलिया ही नहीं है कदे मन वाहिगुरु परमेश्वर दे शब्द उपदेश वल लाया ही नहीं है। बुद्धि नाल कदे निर्णय ही नहीं कीता कि परमेश्वर दा नाम सत है ते असी इहदे नाल जुड़ना है। इस वास्ते कहिंदे ज्ञान ते विचार यह नज़र नहीं है मन बुद्ध रूपी नेत्रां अखां दे विच इसलिए अन्ने हो। सतगुरु जी के प्यारे भगत साहिबान जी की बाणी विच महाराज की समझाउंदे ने बचन करके कहिंदे अन्ने ओ नहीं हन जिन्हां दे मुख ते अखां नहीं हन अन्ने ओ ने जे खसमों कुथे जाहे अंधे सेई नानका जे खसमों कुथे जाहे ओ ने अन्ने जिहड़े मालक वलों साध संगत दी परमेश्वर वलों भुले होए ने। इस वास्ते शब्द ना जाणहे से अन्ने ते फिर अगला बचन क्या है बोले बोले किवें ने महाराज दो कन्न दोवां कन्नां विच ना श्रद्धा ते ना विश्वास गुरु का वचन सुन के हिरदे च शरदा नहीं पैदा हुई ते दूसरा कन विश्वास भरोसे दा उस नाल यकीन नहीं बनिया सुन के ना हिरदे च शरदा ते ना विश्वास शरदा ते विश्वास दे कन नहीं इस वास्ते बोले हां इस वास्ते बोले हो रहे हन। ते जेडे ऐसे ने शब्द नहीं जाणिया जेडे अन्ने ने ज्ञान विचार दी नज़र तो हीणे होण करके ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹਨ
1: ਸੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿੰਨ ਮਾਦ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਕਿੱਡਾ ਸਖਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਏ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ।
1: ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
0: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 6 ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਵਿਰਥਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
1: ਫਿਰ
0: ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਜਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਹ ਦੀਏ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹ ਰਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਸ ਪੀਆ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਰਸ ਨਾ

0: कर पैदा कीता बनाया है ते फिर आप ही सारी सृष्टि दे सब जीआं दे कीते कर्मां नूं वेख रहा है। वाहिगुरु सब दे कर्म वेख रहा,
1: जिस बिन अवर न कोई।
0: पता है कि ख्याल कर लेना कि वह वाहिगुरु तो बिना साड़ी कोई राखी कर लवेगा, साड़ा कोई भला कर देवेगा। महाराज कहिंदे तिस बिन अवर न कोई, उस वाहिगुरु तो बिना दूसरा होर कोई नहीं है। उही पैदा करदा, उही संभाल करदा, उही सब दे कर्मा नूं वेख रहा, फल देण वाला।
1: जो तुर लिखिया सो कोए ना मिटै भाई।
0: जिहड़ा फिर कीते हुए कर्म दे अनुसार अंतशकरण दे उते लेख लिखिया गया ना, उहनूं मिटण दे विच होर कोई सहायता करन वाला नहीं, मिटदा नहीं है वो कर्म।
1: करता करे सो होई,
0: करता पुरख परमेश्वर वाहिगुरु जो करदा उहो कुझ ही हुंदा है।
1: नानक नाम वसया मन अंतर भाई,
0: जिन्हां दे हिरदे दे अंदर नाम वस गया है।
1: अवर न दूजा कोई,
0: इन्हां वास्ते दूसरा होर कोई नहीं है। एक नाम ही है महाराज परमेश्वर जी का, केड़ा नाम है? आओ कुछ पल वास्ते मिल के सारे सिमरिए, फिर लड़ीवार पावन बाणी दे शब्द ही विचार विच जुड़ांगे। मनोबिरती एकाग्र करिए, सतगुरु जी ने शब्द बख्शे।

0: कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: गुर दुख काटे आ दिनों

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूं ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मलिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मलिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: घंटे 70 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकते हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। That is

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144 3670 63rd Avenue North East कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जोहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जोहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: और जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिंग इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

रामदास चित है बसै, गुरु रामदास चित है बसै, गुरु रामदास चित है बसै।

0: मन मह चितवो चितवने, उदम करो उठनीत। हर कीर्तन का आहरो, हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत।
1: कारिशनान।

0: जन नानक सतगुरु मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया।
1: लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान सच्चा तेरा सच्चा अपमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लाख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब दो सच्ची तेरी सित सच्ची साला सच्ची तेरी कुदर सच्चे पाशा नानक सच तैन सच जो मर्ज में काच निकाच महला पहला।
0: वड़ी वड़ाई जा वड़ा नाओ वड़ी वड़ाई जा सच ने आओ वड़ी वड़ाई जाने चलताओ वड़ी वड़ियाई जाने अलाओ वड़ी वड़ियाई बुझा सब पाओ वड़ी वड़ियाई जा पुछना दात वड़ी वड़ियाई जाए आपे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सर्व जाए माला दूजा
1: यह जग सच्चा है कि है कुटड़ी सच्चे का जवाब।

मैं हर कब प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हम मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सत्संसा कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहा कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खाप हुए।

0: घटना कोई आके पत परवाना पिछे पाई ता नानक तोलिया जापे मरला पहला
1: वदी सोव जगना।

मन जान गावे अशल छला, गावे गुण तुम अटल मंडल वै, भगत पाए रास जाने ओ, कभी कल

0: गावे गुण परन चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावे गुण शेष सहस जे बरस आद अंत लेवलाक तुना गावे गुण महादेव बैरा के जिन ध्यान निरंतर जान्यो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो राज जोग मान्यो बस्यो अंदर वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरे नाम ले तरे निरंतर गुण गावे सनकाद आद जन काद जुगे लक तन तन गुर तन जन्म सक्यत पलो जक पाताल पुरी जयकार तुन पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल खाने हो हर नाम रसिक नानक गुर राज जोग ते मान्यो पाताल पुरे जयकार तुन कब जन कल बखान्यो हर नाम रसिक नानक गुर राज जोग ते मान्यो
1: सतयुगता मान्यो बस सतयुगता मान्यो चलियो बल बावन पायो त्रितता मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्रसेन को राज अपै भक्ते जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत माज सोध जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किंकनी सबत चनत्कार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ को कौन मेट सके ईस बम ज्ञान ध्यान धरती है चाहे जियो सत सात श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
2: गुण गावे रविदास भगत जय दे तरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ और न जान सुख दियो परे खत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गौर नित नव तन जछायो सुख दियो पारे खत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गौर नित नव तन जग छायो
3: गुण गावे पायाल भगत लगाद प्यंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन बेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुकम सब सिद्ध सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जप काल सो जस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज सुमायो माता दा गुण रवे जेन चकर वे कहायो गुण गावे बलराव ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਪਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰ ਬਾਪੁਰ।

गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुपाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए कन हर बूंद बसो रो मावल कुसम बसंत गनंत ना आवे रव सस के।

साठ साठ मजन होए। सतगुर खे माताणिया जुग जूत समाणे, अन पौने जा नाम टेक जित भगत अगाणे। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे। एहो राज जोग गुर रामदास,

की अमृत छाड बिख बिख खाई माया मो परम पुल सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत

0: नानक हर पाए हर पाए।
1: श्लोक महला पहला। सिमल रुख सराय राय अत दीर्घत मुच, ओए जे आवे आस कर जाए नरसिकित। फल पिके फुल बक बके कामना वे पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत। सब को निव्या को पर को निवना को, तारता राजू तो लिये निवे सुगुरा होए। अपराधी दुना निवे जो हंता मृगा है, शीस नवाए कैथी है जर जैक सुते जाए। महला पहला।
0: पढ़ पुस्तक संध्या बादन, सिल पूजस बगल समाधन। मुख चूठ विपूक संसारं, त्रैपाल तिहाल विचारं। गल माला तिलक ललाटन, दुई तोती वस्त्र कबाटन। ये जानस ब्राह्मण कर्मं, सब पूकट नेचो कर्मं। कहु नानक नेचो त्यावे, इन सतगुर वाट न पावे। पौड़ी कपड़ सामना छट दुनिया, अंदर जावना मंदा चंगा अपना। आपे ही कीता पावना, कुन किए मन पावन।

0: जे मुहाका कर्म है कर्मे पितरी दे अगै वत सियाणीए पितरी चोर करे वड्डिए हथ लाल के मुसपीए करे नानक के सो मिले जे खटे काले दे मोहला पहला
1: जोन जोर उसर नाव नी आवे बार बार झूठा झूठा मुख वसै नित नित होए खुआर सूचे हिना आखिए बैंज पिंडा तोए सूचे से ही नानक जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पुलाने कौन वे हर दंगी हर मुसवारे कोठे मटक माड़िया लाए बैठे कर पा सारा ची कर मन पाम दे हर बुझण नाही हारिया कर परमेश काया एक महलत मरन विसारिया जर आई जो बनहारिया जो बनहारिया
0: ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ।

0: नित जपे हर नाम तेरा वे।
1: श्लोक महला दूजा एक नहीं आसी दूजे लगे जाए नानक कस कांडिया सधीरे समय चंगे।

इन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख सब होई, जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिले।

ऐसी बात करी जे, ऐसी बख्श करी जे, ऐसी बख्श करी जे, ऐसी बख्श करी जे, ऐसी बख्श करी जे, ऐसी बख्श करी जे, हम भी खक पे करी तेरे, हम भी खक पे करी तेरे, तूने जपत

0: वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: पौड़ी वड्डे क्या वड्याईयां के कहना कहना जाए, सोकरता कादर करीम दे जियां रिक सवाए, साई कार कमावणी त्रिशुड्डी तने पाए, नानके की बारी और दूजी नाही जाए, सो करे ते सिर जाए।

गुरु बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया दीख चलाई तीग वाही देख के अरडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सुआसां नाल निभाए तिना दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी का वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चेते आवण का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रिया देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान के सुदान रहत दान बाबेग दान विसाह दान भरोसा दान दाना सुरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनार चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुगी अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मान नीवा माती उच्ची मत पत दा रखाप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे माणे

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast Calgary।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681।

ने केड़े समय तेनू लजावा, नानक किसनू आखिए विण पुछियां ही लै जाए। ओ जदों आउंदी है बगैर पुछण तो ही लै जांदी है। गुरु नानक साहिब जी महाराज की समझा रहे ने।

कादे ले एडियां लड़ाइयां कीतियां है मेरी अम्मा, फिर इंज करी जदों मेरी अर्थी उठे ते कफन दे विचों मेरे हाथ बाहर काढ़ देना। मां ने फटाफट चुक के सिर इस दा गोद विच रखिया, ना मेरे पुत्र इंज ना बोल, की देखदी है सिकंदर दे सवास निकल गए ने। आचार भाई जदों चुक के टुरन लगे ना ते मां ने अगे हो के दोनों हाथ कफन तो बाहर कढ़ दिते, की कीरने पा रही है की रो रही है, आ दुनिया वाले ओ देख लो, सारी दुनिया ते राज करन वाला बेशुमार धन कोल है ते खाली हाथ चलिया है, कुछ भी कोल नहीं। ओ राजा जेदे कोलों बड़े बड़े राजे भी सलाह लेके तुरदे सन, हजारां दी गिणती विच फौज खलोती रहिंदी सी, कदों हुक्म करे ते असी अगे तुरिए, अज मौत आई ते किसे दी सलाह भी नहीं लई, पुछया भी नहीं, किसे तो पुछया भी नहीं, खुली गंठ उठो लिखिया आया राम, खुली गंठ उठो लिखिया आया राम, जिन्ने सवास लिखे ने एक भी सवास होर नहीं ले सकता। ये जो दुनिया शहर मेला पूंजते देखण नू सब कुछ सच लगता है, सोने महल मकान मोटरां गड्डियां सब कुछ सच्चा लगता है, पर गुरु नानक साहिब कहिंदे आ जदों तकीदा है ना, बड़े बड़े शाह अमीरड़ियां नू भी लोकी चुक के शमशान घाट वल नू लै जांदे ने, उदों सारा कुछ झूठ नजर आउंदा है। ये दुनिया जादूगरी है, सच सारा कुछ झूठ विच बदल जांदा है, इसलिए बिन पुछिया ही लै जाए।

तेरी जिंदड़िए मत के जापे शाह आवे के ना आवे राम। हर वेले सिमरन कर ये शरीरा मेरे आ इस जग में आके क्या तुद कर्म कमाया। सतगुरु सानू पूछ रहे ने दुनिया विच आया है कोई चंगा कर्म भी कीता है। हां बई चंगा कर्म कर एहो जै काम कर ए दुनिया तेनू सदा चिर याद करे। चले ते सब ने जाना है क्योंकि वो मौत आन लगियां किसे कोलों पुछदी नहीं।

के चले जाना है। आखरियां पंक्तियां कीर्तन समा समाप्त है, हर वेले तैयारी रख। फिर जान वेले रोण धोण क्यों घोड़ियां करता है। किसे सफर नू जाना है ना, ठंडे इलाके विच जाना है ते गर्म कपड़े गर्म समान बांध लेंदा है। गर्म इलाके विच जाना है ते नाल ठंडे सादे कपड़े लै लेंदा है। जेहो जी जगह जाना ओहो जी तैयारी, ते क्यों तैनू भुल गया है निरंकार दे देश भी जाना है। उन्हें एक दिन बुला लेना है, उथे दे भी तैयारी रख। उथे की जाना है, उथे सिमरन जाना है, प्रभु दी बंदगी जानी है, चंगियाईयां जानियां ने। इसे लिए उन्हें दसना नहीं, समा नहीं देना भई तैनू दो महीने की मोहलत दी ते तैयारी कर ला, नहीं सदा ही तैयारी रख, उन्हें बुलावा भेज देना है।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

माना सिमरत काहे नाराम, तन तन संपै सुख दियो अर जेहे नीके ताम। कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज और आप समूह श्रवण कर रही साध संगत, सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज, जिन्हां दे आप जी ने शलोकां विचों सतवें और अठवें शलोक दा पाठ श्रवण कीता है। आओ इस अमृत बचन नू गुरु आसीस नाल, गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी बख्शीश नाल आपां विचार सकीए। सतगुरु जी आप बख्शिश करो साडे कथन और सरोत नू, आप विच वर्त के एकाग्रता पै भावनी हिरदे दी स्वच्छ निर्मल भावना दी दात बख्शो और आप विच वर्त के कथा विचार करा लो और सुन वालियां दे हिरदे नू भी आप जी शब्द दी बख्शीश करो। साध संगत आओ इस वक्त हजूर दे इना अमृत बचना दी विचार सरवण कर लगे को आप जी आसीस बख्शो। दास इस करके ए दो चार मिनट आरंभ विच लेंदा है के अरदास बख्शीश और आसीस इदे सामने तरातल दी दूरी दी कोई अहमियत नहीं रहिंदी। तुर अंदर तो आप संगत आसीस बख्शो तां जो आप जी दी सेवा कर सकां। प्यार अदब सहित उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। कल जो हजूर दे अमृत बचन आपां विचारे सन उस लड़ी नू अज दे इना शलोकां नाल मिला के आरंभक बेनती है। कल असी विचारिया सी धन दारा संपत सगल, हे परमात्मा इस इंसान दी बिरती की है। ए गुरु तेग बहादुर हर मनुख नू समझा रहे सन के दौलत इस्तरी संपत्ति जिनू इंसान ने तोर अंदर तो अपनिया समझिया है के ए ता मेरे ही हन। धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, जिस जीव ने इन्हां नू अपनिया समझ लिया इन मैं कच संगी नकी नानक साची जान। महाराज कहने धन दारा और संपत्ति विचों कोई भी संगी साथी नहीं, इस गल नू सच्ची जान। ए तेरे नल अज नहीं कल नहीं पर अंतले समय तेरे नल हर हालत विच वापरनी, तेनू सच जान। उस तो अगे बचन सी पत तो उदाहरण पापिया नू पवित्र करन वाले, भय खरन डर दा खात्मा करन वाले, हर अनाथ के नाथ जिस दा कोई भी नाथ नहीं उस दे मालक ने, ते ओ मालक साडे तो दूर नहीं। कहो नानक तेह जानिए सदा बस्त तुम साथ। ए इंसान

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

सन्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर आप जी हाजरी भर रहे हो। आप जितने हजूर दे चरणा विच उपस्थित हो प्यार अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, फिर उच्चारण करो जी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700, 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नूं 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

सच्चे पातशाह जी पंडित नूं उपदेश करदे आ, फिर इत्थे भावें पंडित लिख के पंडित नूं उपदेश कीता गया इस शब्द दे विच, पर इह जिहड़ी प्रथा इह साखी आ, इह सारे जहान दे वास्ते सांझी आ। इह सारी लुकाई नूं कोई किसे भी धर्म दा किसे भी जात दा होवे, इह हर इक मनुख नूं सांझी जिहड़ी सिख्या सच्चे पातशाह जी ने दित्ती आ। हुण सच्चे पातशाह जी पहला मनमुख की गल करते सी, हुण सच्चे पातशाह जी ने गुरमुखां की गल कीती आ, क्योंकि जिहड़ी बहुतात विच दुनिया वा उह पाप कमाउंदी आ, गलत काम करदी आ, पर थोड़े जे दुनिया दे विच चंगे बंदे रब तो डरन वाले गुरमुख जिहड़े उहनूं याद रखदे आ, उह तों डर के अपनी जिंदगी जिउंदे आ, उहनां दे प्यार करके उहनां दे अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जुड़े होण करके ही उन्हां दी बरकत दे नाल ही सारा संसार खांदा। क्योंकि जिन्नी दुनिया पापां ते उतरदी आ, जे वाहिगुरू उन्हां दा लेखा जोखा करन लग जावे तां दुनिया ते कोई भी ना रवे। सिर्फ उन्हां दी प्यार मुहब्बत करके, उन्हां दे दुनिया दे उत्ते जिउंदे होण करके, उन्हां नूं दुनिया ते भेजण करके, उन्हां दे परोपकार करके ही, उन्हां दी बरकत करके ही दुनिया जिहड़ी आ ओ चल रही आ, ओ उन सारी जिहड़ी कायनात आ ओ उन्हां दी

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144-3670-63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालेयां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150-109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता, तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह के मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर की जानकारी लई पिछले 33 सालों तो कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों तुसीं फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: हर जैसा पुरख न लभई

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नु 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू, साउथ वेस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक ते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका ते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

10-23 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड का पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशन तो हफ्ते दे सत्तो दिन सेवा प्रदान करते हैं। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 Avenue North East कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

0: नेता परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करहे हर पूजा जी तप तप है जपहे बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडे अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मेल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाना हर गुण सद ही आख वखाना जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ै पहिले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चाला हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हौ जति सती नहीं पढ़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जेन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्रापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किता ना काम मिल साध संगत पाज केवल नाम सरंजाम लाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जाप ताप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर कहो नानक हम नीच करमा सारण परे की राखो।

अहो सर्मा एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवयो वाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ द रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु आप हाथ दे मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखियो सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिया सब बैरन कौ आज संघरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे उबरिया मरन काल का त्रास निवरिया जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करियो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देवदैत जक्षन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है काट काट के पट पट की जाना है जब उध करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव ना पावत वेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड काछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा
एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, ओत पोज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो संकर एकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाह छुए सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाय, दुष्ट दोख ते रहा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्द ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यो मनहो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान की टिट हो जिस दिया एह वडे आईया कहे नानक सुनो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद

जग और न याहे महातम मैं अवतार उजागरयान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिने अमृत नाम पियो एह पद्धत ते मत चूकह रे मान भेद विभेद न जान बियो प्रताक्ष हृदय गुरे अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो चरण सरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगै होए लेत है एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है पावनी भगत पाए कौडी अगर भाग राख ताहे गुर सर्व निदान दान देत है सतगुर दया निद महिमा अगाध बोध नमो नमो नमो नमो नेत नेत नेत है सूरा सो पहचानिया जो लड़ दीन के हेत पुरजा कट मरै कबहू न छाड खेत अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपना तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्ज

सलोक राज कपटं रूप कपटं तान कपटं कोल गर्भत है संचंत बिखेया छलं छिद्रं नानक बेन हार संग न चालते राज कपटं रूप कपटं तान कपटं कोल गर्भत है संचंत बिखेया छलं छिद्रं नानक बेनहार संग न चालते पेखंदड़ों की भुल तुम्मा दिसमा सोहना अड ना लहंदड़ो मोल नानक साथ न जुलई माया पौड़ी चल दिया नाल ना चल सो क्यों संजिया तिस का कहो क्या जतना जिस ते वंजिया हर बिसरिया क्यों त्रिपतावा ना मन रंजिया प्रभु छोड़ा अन लागा नरक समंजिया

0: नरक समझिया हो कृपाल दयाल नानक पाओ पंजिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तनासरी महला पहला

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।